अवीयक्षरदामथीयवनिमा ऐश्वर्यमुक्तोलयीशोभे अक्षरसाथसुन्दरछवि लावण्यतेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगटजे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालुने नित्य नमो सर्वावतारी हरि। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। श्रीमद भगवद गीता में भगवाने माक्षर महीना ने पोतानो मास कहो से मासानाम मार्ग शीशो हम वळी भारतीय महीनाओ प्रमाणे आ महीना में धनुर्मास नो पण प्रारंभ थशे। स्वामीनारायण भगवाने वचनामृत नो प्रारंभ पण माक्षर महीना में करेलो छे। तो माक्षर महीनाना पवित्र दिवसोमां जेमना द्वारा भगवान पृथ्वी पर अत्यारे प्रगट छे एवा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजनो पण जन्म दिवस छे, तो माक्षर महीनाना आ शुभ दिवसोमां आपणे 7 दिवस सुधी सत्संगनो जे लाभ लेशुं तेमां सवारे ने सांजे बंने जुदा जुदा विषयों ऊपर आपणे सत्संगनो कथानो लाभ लेशुं। सांजे स्वामीनारायण भगवानना चरित्रोनी वात करीशुं। एना अंतर्गत ज अत्यारे सवारनी कथामां पण आपणे 1 अथवा 2 आख्यानो जोईशुं। एमां पहेलुं आख्यान आपणे जोईशुं सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामीनो। ब्रह्मानंद

सत्संग चरण रज छो एव माने तो काम था। दास न दास नो दास थई रहे तारे श्री तेने दासनी पदवी आपे छे। दास पदवी पर थी पर पदवी छे जे आ समझवू पड़े। हवे ऊपर ऊपर थी कई ना समझाय कई हाथ में आवे नहीं। अने श्रीजी महाराज भगवान जेवा भगवान मिल्या सर्वोई भगवान।

श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय।

योगी जी महाराज नी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सव नी जय। जय जय आपड़ा नित्य नियम मुजब आपड़े सर्वप्रथम हाथ जोड़ी स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोकनु गान करीशुं।

प्रमुख जित मने मूल भूषु कहीं रे, कृपा करो मुझ ऊपरे, सुख निधि सहजानंद, गुण तमारा गाववा।

श्री स्वामीनारायण भगवान ने जय अभाव गुण सत्यानाश कर आपन लागे नहीं अभाव गुण छे ने ए महाराजे जे वात करी छे के बीजा में सौ गुण होय पण एक जेवो तेवो अवगुण

जब जब होत धर्म की हानि, जारे जारे पृथ्वी पर अधर्म व्यापे छे त्यारे अधर्म नु उच्छेदन करवा, धर्म नु स्थापन करवा माटे भगवान पृथ्वी पर प्रगट थाय छे। केवी रीते प्रगट थाय? विप्र